कट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालो चुप ताई अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

के सुटते प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदों।

ओ लेख लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ताही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए।

0: दोस्तों के करम याद आने लगे, रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे।
1: वाह जी,
0: शुक्र है उनका दामन मैं असुर हुआ, शुक्र है उनका दामन मैं असुर हुआ। बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे, बाद मुद्दत के आंसू ठिकाने लगे। रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे। आगे क्या भाई?
1: जी
0: मैंने पूछा के मुझसे मोहब्बत है क्या,

0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए। एक लम्हे, शमी भाई जी सुनियो गल,
1: जी
2: जी
0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, और मनाने में हमको जमाने लगे।
1: हाँ क्या बात है, बहुत
0: रोते रोते वो मुस्कुराने लगे। आगे कहते, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की, रात च सानू सोन की फुर्सत कित्थे है।
1: जी
0: रात में
2: जी

0: लगे
1: क्या बात है।
0: रोते रोते हम मुस्कुराने लगे। लगे
1: बात ही
0: क्या नहीं, वो काल काल दी जिंदगी बारे पूछता भी कल नू की होएगा।
1: जी
0: बोलते ना

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी

0: एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली अज माए बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं। बेगाने च पोगल नू भेज के माए, बेगाने च पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे लेनी। काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, मैनू पाने दी डोलेनी। शुक्रिया साथो, बहुत बहुत मेहरबानी।
1: प्यारे श्रोतियो, सुरेंद्र भोगल जी तो बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वास्ते शायर तारा सिंह जी नूं। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक वड्डे पिंड कोकड़ पिंड नाल संबंध रखदे ने, ते बहुत लंबे समय तो वो बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे वो इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल वो अपनियां मनोभावनावां नूं जिहड़ा आ ओह कविता दे विच व्यक्त करदे ने, ते ओह साडी काम महफिल दे विच पहली वारी आ रहे ने, उहनां दा असीं स्वागत करदे हां। तारा सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਛੂਣਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਸਮ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਮੁਰਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ।

जे डूब गई जे समतरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी बादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर क्या भी नहीं,

डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करा जे आपे चे की करा।

डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना।

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे हैं मन ने। पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल,

है, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी, ये फूलों से लदी।

0: जब थिरकते पांव धरती पर, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।
1: कमल दास जी तो बाद हूँ असि थानू पटियाला विखे डॉक्टर देवेंद्र कौर जी नाल मिलवाण जा रहे हैं। देवेंद्र कौर जी जेडे कि संगीत दे अध्यापक वजों सेवा मुक्त हो चुके ने ते साडियां महफलां दे विच आंदे ने ते साडे श्रोतियां दा मन परचौंदे ने। कला मन ही नहीं परचौंदे, उन्हां दे दिलो दिमाग ते उन्हां दियां कवितावां जिहड़ियां ओ छा जांदियां ने, ते हर वार दी तरह इस वार भी ओ साडी काम महफल दे विच अपनी एक नवी रचना लेके हाजिर हो रहे ने। देवेंद्र कौर जी थोड़ा स्वागत है।
2: सब नू मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर देवेंद्र कौर अज जो कविता थोड़े सामने पेश करन लगी हाँ उसका सिरलेख है किसान दी खुदकुशी। किसान दी खुदकुशी। अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर कत्ल होइयां आसा हजारां। अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर कत्ल हुईयां आसां हजारां। अज फिर क्यों औखा होया जीवना, अज फिर क्यों सौखा होया मरना। बोझ बन गया साडे दिलां ते सवालिया निशान शासन दी हिक ते। किन्ना दर्द सहा होना है उसने, किन्ना दिल च रोया होना है उसने। किन्ने दिन दहशत विच कट्टे, किन्ने दिन दुविधा दी भेटे। सौखा हुंदा कदे कोई मरना, सोचे कदे उस दे तनाह दा। दिन रात वो सहम गया होना है, माँ प्यो अगे टह गया होना है। धी पुत्तां दे फर्ज करके चेते, पत्नी दा सोच दिल दहल गया होना है। साडे लई इक खबर जो बन गई, साडे लई इक खबर जो बन गई, कमर उसदे टब्बर दी बन गई। किन्ने वैण पए होणगे, किन्ने वैण पए होणगे, मां बापू बच्चे कुरलाए होणगे। उसदी जदों कहानी खत्म हुई है, उसदी जदों कहानी खत्म हुई है, टब्बर दे दुखां दी कहानी शुरू हुई है। अन्नदाता अपनी जान दे गया, अन्नदाता अपनी जान दे गया, मुल्क दी हिक ते सवाल छड़ गया। अन्नदाता अपनी जान दे गया, मुल्क दी हिक ते सवाल छड़ गया। मुक गई किसानी जे किसे मुल्क उत्ते, मुक गई किसानी जे किसे मुल्क उत्ते, समझो उस मुल्क दे भाग फिर सुत्ते, समझो उस मुल्क दे भाग फिर सुत्ते। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत थोड़े सारिया का।
1: गुर जी तो बाद हुण असीं सदा देण जा रहे हां दसूहा विखे वास्ते शायर गुरप्रीत सफरी जी नूं। गुरप्रीत सफरी जी जिथे अध्यापक ने नाल दे नाल ओह कवितावां भी लिखदे ने, ते सब तों वड्डी खुशी वाली गल ए कि उहनां दे बाबा चरण सिंह सफरी जी दी विरासत नूं ओह अगां लैके जा रहे ने। गुरप्रीत सफरी जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे हफ्तावारी कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है जी।
3: सत श्री अकाल दोस्तो, खुशी महसूस हो रही है अज फिर आप जी दे सामने हाजिरी लगाउण दा मौका मिल रहा। सो मैं दुआबा रेडियो दी पूरी टीम दा तह दिलों धन्नवाद करदा हां, जिन्हां दीआं कोशिशां दे कारण हर हफ्ते आप जी दे सामने पेश होण दा मौका मिलदा। एक छोटी जी कविता पेश करांगा, उम्मीद करदा आप पसंद करोगे। चोगे दी भाल विच, चोगे दी भाल विच जदों भी आलणियां चों उड़े सन परिंदे, चोगे दी भाल विच जदों भी आलणियां चों उड़े सन परिंदे, एक वार फिर तूफान उन्हां दे परां नूं सन परखण लगे। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿਲ ਮੋਮ ਸਨ ਧੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿਲ ਮੋਮ ਸਨ ਧੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਸ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੰਖਣੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਠੋਸ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾਵਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾਵਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਹਟ ਗਏ ਸਨ ਗੁਬਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਧ ਜਦੋਂ ਝਲਕਣ ਲੱਗੇ। ਚੋਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਡੇ ਸਨ ਪਰਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪਹਿਰ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪਹਿਰ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਚੋਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਚੋਂ ਉੜੇ ਸਨ ਪਰਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਸਾਡੀ ਕਾਮੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਮੇ ਫਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
4: ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਸਜਣਾ

0: वो तो हम क्या
1: बिल्कुल
0: करेंगे। ऐसा जरूरी है कि बंदा कट्टो कट तो रहता सही, वो कोई हिम्मत ना रखे कि कल्पना चावला ने उन्हें लिखा कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी कान ते लेके ला लिया तो वाकई उन्हें ड्रीम फॉलो किया ते
1: बिल्कुल
0: स्टार की यात्रा की। तो ये जरूरी है जिहड़ा कोचिंग, एक आपां गल कर रहे सीगे कि जिहड़ी कोचिंग दी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदे तो मैन टू मैन वो वेरी करती है, किसी नूं लोड है किसी नूं नहीं लोड है। फिर भी जिहड़े कोचिंग सेंटर्स है ये तो मशरूमिंग इन्हां दी इन्नी ज़्यादा हो रही है, इन्हां दी कोई सिग्निफिकेंस आपां नूं की लगती है जिहड़े।
1: कोचिंग एक भेड़ चाल बन चुकी है अज के जमाने दे
0: जी
1: विच।
0: जी जी जी
1: कोचिंग मैं कहना कई कई बच्चे इस तरह के होंगे ने कि उन्होंने कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बिना कोचिंग के असं पढ़ ही नहीं सकते। एंड दे आर डूइंग वंडर्स। कोटा है,
0: हाँ जी हाँ
1: कोटा
0: जी हाँ
1: दिल्ली
0: जी
1: एक हब
0: वो
1: बन
0: तो
1: गया
0: पूरा
1: है,
0: कोचिंग जंगल बन गया
1: उदे
0: है।
1: उते हब बन गया है, तो उते जिहड़े बच्चे निकल रहे ने काफ़ी सक्सेसफुली निकल रहे ने।
0: जी
1: बट
0: जी
1: तुसी
0: जी
1: परसेंटेज वेखो, उते जो
0: जी
1: लख बच्चे जा रहे ने ते 100 बच्चा निकलता हैगा।
0: ओ जी बिल्कुल
1: ठीक है, ये चीज़ नू आपां 100 दी अचीवमेंट नू देखते हैं कि 100 बच्चा कोटा ने निकालता या दिल्ली ने
0: निकालता। हाँ
1: निकालता या कोई पर्टिकुलर शहर इस तरह का जिहड़ा 100 बच्चे हर साल निकाल रहा है। बट उत्ते परसेंटेज भी देखी जाए कि कहड़े बच्चे नहीं निकालते ते वो अगे की करते पए ने।
0: बिल्कुल
1: मेरा
0: सही
1: कंसर्न नहीं है कि वो बच्चे फेल हो रहे ने, मेरा कंसर्न ये है कि फेल होने तो बाद उन्हां दी उत्ते कोई काउंसलिंग उत्ते हो रही है
0: हाँ जी हाँ जी
1: कि वो बच्चे जिहड़े कि किसी कारणवश नहीं निकलते पे,
0: नहीं
1: अपने
0: निकल
1: करियर च नहीं निकलते पे,
0: हाँ जी हाँ
1: कि
0: जी बिल्कुल
1: वो फेल होने तो बाद अगे होर मेहनत करते ने, अगे होर ट्राई करते ने, अगे कितने कोई डाइवर्स फील्ड के विच चले जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, कि
0: हाँ
1: वो उत्थे ही स्टक रह जाते हैं अपने करियर के, अपने लाइफ के पॉइंट पे कि जी मैं तो हूँ निकलना ही है, 6 7 साल 8 साल अपने भावे मैं खराब कर लवा।
0: जी।
1: सो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर ने उदो पेरेंट्स का अगेन फ्रेंड्स का पीयर ग्रुप का इवन
0: प्रेशर
1: को इवन कोचिंग सेंटर्स का रोल बन जाता है कि बच्चों ढंग ना गाइड करन। 3 4 साल हो गए नहीं निकलता पिया, एंड अगे लाइफ से या
0: जी
1: तो उन्होंने कहो कि एक टाइम लिमिट दे दो कि भाई इन्ना टाइम तू
0: जी
1: ट्राई
0: जी
1: कर ले निकलता,
0: हाँ
1: उस बाद अपना प्लान बी ते आ जाओ। एक प्लान बी होना लाइफ से हर चीज़ से वो
0: जरूरी
1: बहुत
0: है,
1: ज़रूरी हैगा।
0: एक बैकअप
1: एक
0: प्लान
1: बैकअप
0: जरूरी है।
1: जिवें
0: हाँ जी
1: तुहाडे स्टूडियो च बैकअप प्लान तुहाडे हर चीज़ का हुंदा हैगा,
0: बैकअप प्लान
1: वो बैकअप प्लान लाइफ से होना भी बहुत जरूरी है कि कितने कोई
0: बिल्कुल
1: स्टक करके तो तुसी प्लान बी ते आ जाओ। तो
0: जी
1: मेरा
0: जी जी
1: कंसर्न यही है कि जो कोचिंग सेंटर से तुसी जा रहे हो, कोचिंग के बावजूद भी कुछ परसेंटेज 99% तुसी सक्सेसफुल नहीं रहोगे,
0: हाँ जी
1: 1% ही तुहाडा सक्सेस चांसेस हैगे।
0: जी
1: उस तो बाद अपना जिहड़ा प्लान भी जरूर अपने नाल रखना चाहिए है, या तो पढ़ाई के नाल नाल तुसी कोई जॉब ज्वाइन कर लो, या तुसी अपना कोई नाल साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। आजकल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के काफ़ी
0: सारे आ
1: जिहड़े
0: रहे हैं,
1: प्रोग्राम बनते पए ने,
0: बड़े अच्छे
1: तुसी
0: प्रोग्राम हैं।
1: एंटरप्रेन्योरशिप में जाके काफ़ी चंगा इन्वेस्टमेंट दे आजकल साधन बन गए ने,
0: जी
1: तुसी
0: जी
1: नाल नाल कर सकते हो, नाल नाल अपने ड्रीम अचीव करने का भी जिहड़ा है अटैम्प्ट कर सकते हो।
0: बिल्कुल
1: बट
0: बिल्कुल,
1: फेल हो गए, फेल होने तो बाद तुसी ना उठे, फिर उत्थे तुहाडा करियर जिहड़ा
0: क्योंकि
1: खत्म है।
0: जिहड़ा फेल हो के फेल पास होना तो जिंदगी का एक वो
1: बिल्कुल
0: यही जिंदगी है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: इतने प्रेशर इन्ना होंगे उत्थे जो आप कोटे की गल करिए, जां इवन जिहड़े साडे सराउंडिंग होर शहरों के विच भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, जो पेरेंट्स उत्थे भेजते हैं बच्चे नूं वो इनू एक ग्रंटड मान लेंगे कि हुण उत्थे चल गया, दैट इज बस ये हो गया बन गया है जो आप बनाना चाहते हो। उस उतों बच्चे दे जिहड़ी स्ट्रेस लैवल कितने ज़्यादा बढ़ जाता है,
1: बिल्कुल
0: तो आप ये भी देखते हैं बड़ी दुखदाई खबर आती है कि उत्थे आत्महत्या कर ली किसी बच्चे ने,
1: बिल्कुल
0: कुछ घट गया वध गया नंबर कुछ ऐसा हो गया है, ये एक माड़ा असर जिहड़ा आप समझते हैं कि पैंदा है बच्चों का। वो प्रेशर है जिहड़ा है उन्होंने घट मैनेजमेंट है जिहड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये बच्चा किवें उन्होंने कर सकता है उत्थे जिहड़ा बंदा उत्थे है।
1: एक हैरानी वाली गल जड़ी सामने आ रही है, स्ट्रेस जड़ी मैनेजमेंट है फेलियर से भी नहीं है, सक्सेस से भी आजकल स्ट्रेस हो रहा है।
0: अच्छा
1: बच्चे
0: जी
1: जड़े फेल मतलब फेल मैं कहूँगा नाकामयाब हो जाते हैं किसी कंपिटेटिव एग्जाम च, उन्होंने खबर आदि
0: हाँ
1: ने
0: जी हाँ जी
1: कोई किसी फील्ड से चला जाता, मान लो डॉक्टरी कर लेंदा है या किसी
0: जी जी
1: इंजीनियरिंग कर लेंदा है, उत्थे कोई इस तरह की घटना हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, या फिर उत्थे तुहानू प्रॉपर तुसी अपने करियर च आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तुसी पढ़ोगे अजकल कॉलेजेस दे विच भी सुसाइड दे जिहड़े केसेस ने काफ़ी
0: आ
1: जिहड़े है
0: रहे
1: बाहर सुनने नू आ रहे
0: आ
1: ने।
0: रहे हाँ जी हाँ जी
1: स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई कोई टेक्निक नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुसी कोई टेक्निक तुसी उदी स्टडी कर लो तो उस वादे स्ट्रेस नू जिहड़ा मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस तुसी अपने ही तुहानू ही काबू करना बेसिकली,
0: सेल्फ काउंसलिंग ही
1: सेल्फ
0: होगी ये।
1: काउंसलिंग तुसी कुछ अपने आप नू इस तरह किसी चीज़ से रुझा लो, जिवें आप कहते हैं खेड खेडनी बहुत जरूरी होंगी है,
0: हाँ जी हाँ जी
1: खेड खेडना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। ताड़ा
0: बिल्कुल
1: कोई लाइफ से इंटरेस्ट है, तुहानू डांसिंग का शौक है, तुहानू सिंगिंग का शौक है,
0: वो भी बिल्कुल
1: तुहानू
0: सही
1: जॉगिंग का शौक है,
0: बिल्कुल सही
1: अद्धा पौना घंटा लाइफ

तक दिया रहिया ने रामा नित तेरिया है रामा नित तेरिया। रो रो के पिछे गई अखा दोवे मेरिया वह अखा दोवे मेरिया। गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा, गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा। हूँ

0: सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, चोरा मेरिया हड्डा नु नित खावे, हाए वे मेरी हाड़ा वे मेरी जान सुख दी, चन चंद्रा जदों भी चढ़ आवे, हाए वे मेरी जान सुख दी। धन्यवाद जी। दो गल्लां मैं होर कहनियां चाहवांगी जी, स्पैशली ह्यों साहब जी नूं। ये गीत मैं जी 2001 च लिखा सी, मैनू नहीं सी पता कि मैं की लिख रही हाँ, ये गाने दे रूप च है या मैनू की हक है अपनियां लिखियां होईयां लाइनां जां अखरां नूं कैद करन दा। मैनू नहीं सी पता कि मैं इस डायरी नूं क्यों संभाल के रखिया हुण तक, ते ये अखर जे अज मेरी डायरी दी कैद चों बाहर निकले ने तां ये सिर्फ ह्यों साहब जी करके निकले ने। सो मैं एक बार फिर कहना चाहवांगी, ये सोंग मैं 2001 विच लिखा सी जी, ते अज 2020 चल रहा है। सो मैं बहुत ही भावुक मन नाल एक बार फिर तो दबाबा रेडियो की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जी। थैंक यू।
1: जीत रूबी जी तो बाद मैं हुण सदा देन जा रहा हूँ गुरदासपुर शहर च वसदे शायर रवि गुरदासपुरी जी नूं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਸੁਨੇਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੇੜਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣ, ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ,

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा तेरे रोने च रोआ।